सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: जी ऑफ कोर्स, आपका और मेरा ये इश्क ही तो है जो मुझे यहाँ तक लेकर आ जाता है।
1: वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश।
2: ये छोरी कशिश,
1: हाँ जी आपकी कूल सी छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है मैं बिंदास बनाने की थोड़ी सी कोशिश जो है वो करूँगी, एंड आप लोग मुझे हेल्प करेंगे क्योंकि दो दिन के वीकेंड के बाद जो है मुझसे भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि वीकेंड जो है वो बिल्कुल ऐसे आता है जैसे बच्चों के लिए जो है वेकेशन के बाद वापस स्कूल जाने का वक्त आता है ना, जब उनसे जो है उठा नहीं जाता है, उनको लगता है कि यार ये क्यों हो गया, बिल्कुल वैसे ही हमारे अडल्ट के लिए जो है वीकेंड हर वीक हमें ऐसा शौक देता है। सो फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि अमेजिंग वाले गानों के साथ हमें शुरू करना चाहिए हमारा आज का दिन। अमित त्रिवेदी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। मैं गरम गरम पानी भी आती हूँ ताकि मैं आपसे अच्छी सी आवाज में बात कर सकूं। स्टे ट्यून और कहते रहिए जी ओ बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में,
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग वाले गाने के बाद जो है मैं आ चुकी हूँ थोड़ी और एनर्जी के साथ. मतलब थोड़ा कम एनर्जी में थी जब पहले बात कर रही थी, अब थोड़ी ज्यादा एनर्जी है. और आप लोगों के अगर हाय हेलो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस मिल जाएंगे तो शायद मैं थोड़ी और ज्यादा बढ़िया हो जाऊंगी, है ना. फिलहाल जो है मौसम की बातचीत कर लेते हैं. आज जैसे ही मैं जो है अपने रूम से नीचे उतरी, बाहर मैंने कदम रखा, मुझे लगा यार हल्की हल्की सी ठंडक तो देखो महसूस हो रही है. फिर मैंने अपना जो है वेदर ऐप खोला एंड मुझे पता चला कि यार दोहा में 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है एंड लोएस्ट टेम्परेचर फाइनली 39 हो चुका है. आज का जो लोएस्ट टेम्परेचर है, मैंने क्या बोला अभी. अच्छा, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 39 है, लोएस्ट टेम्परेचर 28 है. अगर मैंने गलत बोला हो तो मैंने अपने आप को ठीक कर दिया है, ठीक है. जज मत करो यार मेरे को, क्योंकि मैं भी तो 2 दिन की छुट्टी के बाद आई हूँ. मुझसे नहीं बोला जाता है, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि मेरा जो है जल्दी सोने का मन नहीं करता और फिर मेरा उठने का मन नहीं करता. तो क्या किया जाए, मैं बताती हूँ क्या किया जाए. वॉल्यूम बढ़ाकर कूल सॉन्ग यार एंजॉय किया जाए, बाकी धीरे धीरे बात करते करते मेरी नींद जो है वो तो खुली जाएगी. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: जाने जाना, अगर जान जो है वो निकल भी रही हो ना कि नहीं जाना, अब तो बिल्कुल जाने का मन ही नहीं है ऑफिस, लेकिन फिर भी देखो उठ के जाना तो पड़ेगा, तो फिर क्यों ना खुशी खुशी जाया जाए।
1: ये छोरी कशिश,
0: अब देखिए किसी ने जो है बहुत खूब कहा है कि जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। देखिए वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन मतलब तो वही है। अब देखिए यार, अब जो है वीकेंड खत्म होना लिखा था तो हो गया खत्म, अब वापस जो है शुरू

फिर रात को ऑफिस के बाद मैं सो गई एंड फिर सैटरडे गो क्योंकि मेरे पैर इतने दुख रहे थे मुझे कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो आपकी ये जो कशिश है इसके पास और कोई स्टोरी नहीं है सिवाय अपना दर्द दुख आपसे जो है शेयर करने के। तो बेटर होगा अगर आप अपना वीकेंड जो है वो आपने कैसे स्पेंड किया ये आप मुझे बताएं। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए और मुझे बताइए यार आपका वीकेंड कैसा गया। मैं हूं आपकी कशिश, फिलहाल मस्त मगन गाना टू स्टेट मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: Yes.
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
1: I still can't believe it. No catch.
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
6: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.
7: रेडियो

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

0: कितना कितना प्यार करते हैं यार। मैं नहीं ना आपको ऐसे बता नहीं सकती लिख के कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर देखो सबसे बड़ी बात तो मैं यही बता सकती हूँ कि अगर मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ तभी मैं इतनी सुबह सुबह उठ के आ रही हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑल पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। आप देखिए प्यार की बात हम कर रहे थे एंड आप सबके लिए जो है मैं सुबह सुबह उठ के आ रही हूँ। एंड अभी अभी मैं अपने पापा से बात कर रही थी, इंडिया में आज संडे है, छुट्टी होती है, सो जो है काफ़ी फ्री थे वो। तो उन्होंने बोला कि यार अरे वहाँ पे कितने बज रहे हैं, उन्होंने बताया कि अभी 6:30 हो रहा है। तो उन्होंने बोला ओहो इतनी सुबह तो तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं उठी हो, देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। वैसे इस वक्त जो है स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:48 एंड मैं जो है आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। ओके सो चलिए आप सबके मैसेजेस पढ़ते हैं और किस किसने मुझे मैसेज किया वो देखते हैं। जुल्फी जी ने एक बहुत ही प्यारा सा जो है मैसेज भेजा है गुड मॉर्निंग के साथ कि इफ़ यू कैन सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग यू विल बी एबल टू लिव as richer life than others. Thank you so much Zulfi ji. And उसके बाद शशिकांत पाटिल जी ने गुड मॉर्निंग लिखा है बहुत ही प्यारे से फूलों के बुके के साथ। अबरार जी ने भी एक बहुत ही खूबसूरत गुड मॉर्निंग वाली इमेज भेजी है चाय के साथ। सो थैंक यू सो मच आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। वैसे हाई हेलो गुड मॉर्निंग अगर आप उठ गए हैं तो मुझे भेज दीजिए, बाकी मैं इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का। सो स्टे ट्यून्ड रही आपकी कशिश के साथ और फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। थोड़ी सी देर में ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाले सवाल के साथ में आने वाली हूं और देखने वाले हम कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट है।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर,
2: ये गाना
3: पूरे देश को पगला दूंगा। अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
4: नाम मनी फॉलोज माय ब्रो।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

रहा है हमको कि आप ये गानों के नाम पे 7, 6, 5, 4 ऐसे सिर्फ उल्टी गिनती कर रहे हैं। अब हम इतने बेवकूफ नहीं रहे। हाँ जी, आपकी कोई छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर जो है अमेजिंग वाले गाने एंड बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का जो बीड़ा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आज जो है ब्लैक बोर्ड स्टोरी में बड़ा ही आसान सा सवाल जो है वो मैं लेकर आई हूँ। अब आप जो है हर रोज़ ब्रश तो करते ही होंगे, ऑफकोर्स हम सब करते हैं, ठीक है। सुबह सुबह ब्रश की बात कर लेते हैं हम, है ना, ओरल हाइजीन की बात करते हैं। सो बस अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर होती है टीथ की, उसे क्या कहा जाता है? जो मतलब एक पेंट की तरह, जैसे एक दीवार पर पेंट होता है, वैसे वो हमारे दांतों पर होती है। ये ग्लॉसी जो है एक कोटिंग होती है हमारे दांतों पे। सो उस वाइट कोटिंग को क्या कहा जाता है? उस वाइट कोटिंग का नाम क्या होता है हमारी टीथ की? 3311063 पर आकर आप मुझे मैसेज कीजिए। और देखते हैं आप लोग जो है वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कशिश से कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं। एंड बच्चा पार्टी, जितना भी मुझे सुन रहे हैं, बताइए मुझे कि उस वाइट पार्ट को, वाइट जो लेयर है, जो कवरिंग है टीथ की, उसे क्या कहते हैं, जिसकी वजह से टीथ को उसका वाइट कलर एंड हार्ड जो स्ट्रेंथ है वो मिलती है। बताइए मुझे 3311063 पर। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: देखिए, नाचेंगे गाएंगे खुशी भी मनाएंगे जब हमें समझ आ जाएगा कि आप लोगों की नॉलेज जो है वो एकदम आसमान छू रही है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश, एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड हम जो है यहाँ पर कुछ बातचीत जो है वो कर रहे थे, हम एक्चुअल में बात कर रहे थे हमारी ब्लैकबोर्ड स्टोरी के सवाल के, जहाँ पे मैंने आपसे बड़ा ही आसान से सवाल पूछा था और आपको मुझे बताना था कि यार आखिर ये जो व्हाइट कोटिंग होती है हमारे टीथ पर उसे क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या होता है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया है, देखते हैं उनका आंसर सही है या नहीं है। सबसे पहले तो खैर हानिफ जी जो है उनकी बात कर लेते हैं, इन्होंने आंसर दिया है लेकिन गलत आंसर दिया है। मोना जी ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग प्लेइंग, थैंक यू सो मच, ये बोला है। नीलोफर जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, रेवा ने भी जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस, आप सबके आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी जो लोग अभी अभी जो है हमसे जुड़े हैं उन लोगों को एक और मौका दे देते हैं। चलो 3311063 पर मुझे बताओ कि वो जो वाइट कवरिंग होती है हमारे टीथ पर उसे क्या कहा जाता है। 3311063 इज द नंबर। जबरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

जब भी हम ये दूरियों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है ना यार कि डिस्टेंस की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, पीड़ा की बात हो रही है, लेकिन ये दूरिया का जो फन वर्जन है यार, ये मजा ही आ जाता है। हाँ जी, आपकी कुल सी छोरी, आपकी कसू जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए आंसर्स लेकर। सो मैंने जो है आप लोगों से ये पूछा था कि ऐसी कौन सी वो हमारे टीथ पर लेयर होती है जिससे जो है हमारे दांतों को पावर मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है एंड उनका वाइट कलर मिलता है। सो बहुत सारे लोगों ने हमें सही सही आंसर दिया है, लेकिन अभी नूरुल हुदा जी ने जो है हमें आंसर दिया है एंड उन्होंने आंसर दिया है प्लाक। नहीं नूरुल हुदा जी, प्लाक जो है वो एक बिल्टअप होता है जो हमारे दांतों को ख़राब करता है, पर इनामल जो है वो एक चीज़ है जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है। अब इनामल के बारे में अगर हम और जाने तो द हाईली मिनरलाइज्ड आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है ये, मतलब बहुत सारे मिनरल्स को, कैल्शियम को सबको मिलाकर जो है वो इनामल बनता है एंड काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे जो है आपके दांतों को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके दांतों को कलर मिलता है एंड अगर इनामल जो है वो वीक होने लग जाए जैसा नूरुल जी ने कहा प्लाक से, तो प्लाक से जो है अगर आपके दांतों में प्लाक हो और वो आपके दांतों को इफेक्ट करने लग जाए तो उससे जो है आपका इनामल जो है वो डिके भी हो सकता है, जिसे दांत का ख़राब होना कहते हैं। सो इसलिए डेंटल केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सही आंसर देने वाले लोगों के नाम मैं पहले ही दे चुकी हूँ, मोना, नीलोफर, रेवा, इन सब ने बिल्कुल सही सही आंसर दिया, सो थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने आंसर दिया लेकिन गलत आंसर दिया उनको भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने एटलीस्ट मेरे लिए वक्त निकाला एंड अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का जो है हिम्मत दिखाया। वेरी नाइस। 3311063 पर बाकी और कोई बातचीत आपको करनी हो तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास। तेरी मेरी कहानी से ये अमेजिंग वाला ट्रैक मुख्तसर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर और एकदम अर्ली 2000 वाली जो है आज सुबह से वाइब आ रही है, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते

0: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
1: यस बेबो,
0: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
1: यस,
0: कैच क्या है?
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
1: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
2: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
3: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
4: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
5: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.
8: इन एसोसिएशन विद
7: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.
9: मैं

0: वूम, वावा वूम का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्साइटेड।
1: ये छोरी कशिश,
0: हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कसूस जो है यहाँ पर आ चुकी है लेकर आपके लिए आपका बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है मैं बिंदास बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा खास सा मिल ही जाता है। एंड जो है कल भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे जो है कुछ खास सा मिल गया। सो अगर आप जो है स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ में काफ़ी है एंड आपकी रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं चल रही है, तो जो है आपको एक चीज़ करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो अगर आपके पार्टनर से जो है आपकी जो है थोड़ी सी ऐसे लड़ाई सी चल रही है या आप लोग जो है बात बात पर डिसएग्री करने लग जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इंस्टाग्राम ने मुझे बताई हैं, मुझे तो काम नहीं आ रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो क्या ही किसी के साथ बट आप लोगों को शायद हेल्प हो सकती है। सो देखिए, आपको जो है करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जो है एक जो है छोटी सी बुक जो है वो लेनी है एंड उस बुक को दो लेनी है एंड उनको एक जो है आपको लेनी है और एक अपने पार्टनर को देनी है। दोनों को सेम टाइम पे वो बुक जो है वो रीड कर रही है। अब सेम टाइम पे जब आप सेम बुक रीड करोगे और उसके बाद फिर जब कॉन्वर्जेशन करोगे तो आपको जो है सामने वाले की इंटेंशन समझ आएंगे, सामने वाले का यू नो प्रस्पेक्टिव समझ आएगा, क्योंकि सेम चीज़ जब दो अलग एंगल से देखी जाती है तो काफ़ी एक यू नो अलग प्रस्पेक्टिव निकल के आता है। सो अगर आप अपने पार्टनर को समझने में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है ना, आप उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बुक जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। एंड अगर आप बुक वाले पर्सन नहीं है तो कोई ऐसी चीज, कोई एक अलग जॉनर की मूवी जो है जो आप दोनों ने ही नहीं देखी है या जिसके लिए दोनों ही एक्साइटेड नहीं थे, या दोनों का ऐसा है कि मुझे एक्शन नहीं पसंद, मुझे रोमांटिक नहीं पसंद, मुझे कॉमेडी नहीं पसंद, तो कोई बीच का रास्ता निकाल के एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री या मूवी जो है वो देखिए। इससे जो है आप लोगों के बीच में जो है कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। एंड सिर्फ देख के या पढ़ के नहीं बैठ जाना है, उसके बारे में बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है, और ऐसे नहीं कि यार बता दिया सामने वाले को कि आज जो है हम ये मूवी देखेंगे फिर डिस्कस करेंगे। नहीं, उन्हें देखने दो, बुक पढ़ लो उनके साथ, उसके बाद जो है ऐसे धीरे से कॉन्वर्जेशन जो है वो स्टार्ट करना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए एंड अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करने चाहिए। गाने का नाम है अल्फाज, आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर एंड हमजा मलिक एंड ज़ैन मलिक की आवाज़ में हेयर ट्रैक। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इन्जॉय कीजिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

ऑफ कोर्स जी, देखिए गबरू तो रेडी टू मिंगल है, लेकिन एक चीज है जो दिक्कत दे रही है और वो है एक्सपेक्टेशंस का रियलिटी से ना मैच कर पाना। ये छोरी कशिश, कशिश, कशिश। आजी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, क्या होता है ना कि कई बार हम एक्सपेक्ट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, हम मेहनत भी करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके, लेकिन कई बार वो रियलिटी से मैच नहीं करती। यार अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मतलब हम सबके हाथ में जिस कंपनी का फ़ोन है, मैं आईफोन की बात कर रही हूँ, मैं एप्पल की बात कर रही हूँ, उस कंपनी ने भी एक्सपेक्ट तो ये किया था कि जो उनका बर्गंडी वाला जो नया आईफोन 18 है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा एंड बहुत ज़्यादा जो है एकदम क्रेज़ होगा। ऑब्वियसली क्रेज़ है एंड लोग खरीद भी रहे हैं, मैंने ही अपने आसपास देखा लोग जो है वो कितने गागा हुए हैं उस चीज़ के बारे में कि यार मेरे पास बर्गंडी आईफोन है एंड आईफोन 18 जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिरर सेल्फीज़ में हर जगह दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि एप्पल जो है वो क्योंकि शॉर्ट ऑफ यू नो ऑर्डर्स हो गया है, यानी उसको एक्सपेक्ट जितने किए थे उससे ज़्यादा तो नहीं, उससे कम ही ऑर्डर्स जो है वो आए हैं आईफोन 18 के लिए, इसीलिए थोड़ा सा जो है ऐसे शॉर्ट पड़ गया है ऑर्डर्स का। अब मुझे ऐसा लगता है यार कि इस बार ना आईफोन ने क्या किया है कि इन्फ्लुएंसर्स को पीआर के तौर पे आईफोन से वीडियो बनाने के लिए या आईफोन 18 जो है वो रिव्यू के लिए ऐसे दिया कि लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ही कॉमन है, ये नया वाला लेके क्या ही करेंगे, अभी भी सबको वो ऑरेंज कलर का जो 17 है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मुझे भी जो है काफ़ी डाउट्स है कि अब जो है नए फ़ोन के लिए जो है मुझे मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि हर बार नए आईफोन के आने से, हर बार कोई ऐसे नए डिवाइस के आने पर आपको खरीदना चाहिए मार्केट से मैच करने के लिए, या सच में हमें जरूरत भी है? 3311063 पर आप बता सकते हैं। बाकी थोड़ी सी देर में आपकी मेंटल हेल्थ की बात जो है वो हम करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून रहिए और अमेजिंग वाला गाना जो है बेबी डू डाई डू से इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर। आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओ बिंदास।

0: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
1: यस बेबो,
0: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
1: यस yes.
0: कैच क्या है?
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
1: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
2: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
3: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm number one. Abu Hogi, Bindas Morning.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.
8: इन एसोसिएशन विद
7: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: अनजाना अनजानी, देखिए अब तो हम अनजान और अनजानी रहे नहीं है क्योंकि हमारी बातचीत अब रोज ही हो रही है।
1: ये छोरी कशिश,
0: जी आपकी कूजी छोरी, आपकी कसू जो है वो यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर। एंड जितने भी मेरे कार लवो फ्रेंड्स हैं उनके लिए खबर जो है बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अब विजिट कतर ने सिंगापुर में F1 रेस वीक के दौरान जो है एक गार्डन सूप लगाया था जिसमें एक्टिवेशन में जो है 1700 से ज्यादा लोग जो है वहां पर आए। एंड ये जो इवेंट था ये सिंगापुर में हो रहा था 7 से 9 अक्टूबर को। अब मैं इसे एक्सपीरियंस को अमेजिंग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे यहाँ का कल्चरी जो कल्चर है उसको शोकेस किया गया था। अब इस इवेंट में जो है फॉर्मूला 1 कतर के जो है जो टीम है वो भी हमें देखने को मिली थी, और ये सब फॉर्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स का जो है बिल्डअप हो रहा है। सो जो 27 से 29 ऑफ नवंबर तक लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में जो है वो होस्ट होने वाला है। सो जितने भी F1 के फैंस हैं वो वैसे कहना चाहूँगी मैं एवेंजर्स असेंबल, सो F1 के फैंस असेंबल हो जाओ क्योंकि आपको जो है बहुत सारा फन होने वाला है। बाकी आप कितने एक्साइटेड हो इस इवेंट के लिए? मैं तो जब कतर आई थी तो मेरे भाई ने जो है मुझे बोला हुआ था कि यार वहाँ ना F1 होता है, सो ये जो जैकेट है मेरी वाली वो लेकर जाओ वहाँ पर ना, मस्त फोटो खींच के मुझे भेजना। वो जैकेट मैं लाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे कहाँ मौका मिलेगा F1 में जाने का। सो आप लोग बताइए कि आप लोगों को F1 के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और किस तरीके से जो है फैन डम जो है वो मुझे देखने को मिलने वाला है F1 का। फिलहाल जो है फैन तो आप मोहित चौहान के हो जाएंगे जब आप उनकी आवाज में जब वी मेट का हम सब का फेवरेट गाना तुमसे ही एंजॉय करेंगे। सो जरा आपकी मॉर्निंग को रोमांटिक बनाने में आपका मन आपकी मदद करती हूँ मैं। तुमसे ही गाना जो है आपकी रेडियो सेट्स पर जरा वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी बिंदास।

0: free, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
0: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

जितने भी मिलेनियल्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनके लिए एक नॉस्टैल्जिक बात जो है वो मैं लेकर आने वाली हूँ। हाँ जी, हम जेंजीज जो है वो अक्सर नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं कि यार हमारे बचपन में ये चीज थी, इसे वापस लेकर आओ, वो चीज वापस लेके आओ। लेकिन कई बार मिलेनियल्स को जो है काफी ऐसी फीलिंग आती है कि यार हमारे टाइम वाली चीजें कब वापस आएंगी। सो आपके टाइम की चीज जो है वो वापस आ रही है। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ऑर्कुट यूज किया था? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ऑर्कुट क्या है। मैंने उसके बारे में जाके पढ़ा है कि ऑर्कुट क्या है। सो वेलकम टू गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑरिफेयर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग। अब आप में से कोई है अगर जिसने कभी भी ऑर्कुट यूज किया है, आपको पता होगा कि ऑर्कुट क्या है। जिन्होंने नहीं यूज किया, जो मेरे तरह जेंजीज हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ऑर्कुट जो है इंस्टाग्राम फेसबुक से पहले जो है एक सोशल मीडिया हैंडल था जिसपे जो है लोग बातचीत किया करते थे, ट्वीट जैसे बेसिकली किया करते थे। एंड गूगल ने जो है ये बनाया था एंड ऑर्कुट नाम के ही इंसान ने इसे बनाया था 2004 में। एंड ये जो है बढ़िया तरीके से यूज होता था, लेकिन आई थिंक 10 साल बाद इसे जो है बंद कर दिया गया क्योंकि और बहुत सारे अच्छे बेहतर सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो आ गए थे। पर अगर मैं मिलेनियल्स की बात करूँ या उससे पहले के लोगों की बात करूँ, तो इंटरनेट का ज़्यादा कमर्शियल बेसिकली यूज जो है वो ऐसे ही शुरू हुआ था। सो ऑर्कुट जो है वो वापस आ रहा है क्योंकि 350,000 लोगों ने जो है एक पेटिशन साइन किया है कि भाई हमें ऑर्कुट वापस चाहिए। तो अब हो सकता है कि ऑर्कुट वापस आए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जेंजीज अगर ऑर्कुट यूज करेंगे तो उसमें भी एकदम स्ले करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से ऑर्कुट यूज करेंगे। सो आपने ऑर्कुट यूज किया है या नहीं किया है? 3311063 पर आकर मुझे बताओ। फिलहाल ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आप की कशिश के साथ ही एंजॉय करते जाओ।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bindas.
1: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
2: Yes.
1: Catch kya hai?
2: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
1: I still can't believe it. No catch.
2: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
3: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
3: In association with
4: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

पता नहीं यार, ये सिर्फ मुझे लगता है या ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि 10th ऑफ अक्टूबर को बहुत सारे बर्थडेज आते हैं। सो कल मैंने जब एक एक करके बहुत सारे लोगों को विश किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार 10th ऑफ अक्टूबर का कुछ ज्यादा लोगों का बर्थडे नहीं है। ये छोरी कशिश, वरना कभी कभी तो एकदम तड़प जाओगी यार, किसी का बर्थडे नहीं आ रहा है, किसी को विश नहीं कर पा रहे, किसी जो है इवेंट में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना खाना नहीं मिल रहा है, बाहर जो है वो जा नहीं पा रहे। लेकिन अब मौका आता है तो समझ नहीं आता है कि भाई कहाँ चले जाऊँ, किसकी पार्टी अटेंड कर लूँ, कहाँ पे जो है विश कर दूँ, किसी की स्टोरी। मेरी कल की स्टोरी पे सिर्फ 4 लोग सिर्फ जिनको मैंने बर्थडे विश किया था वही थे। उसमें से एक मेरे पापा, एक मेरी नानी जी, दूसरे मेरे फ्रेंड के पापा, और ऐसे ही और मेरे बहुत सारे दोस्तों का जो है बर्थडे था 10th ऑफ अक्टूबर को। अब देखो यार, 10th ऑफ अक्टूबर को बहुत सारे लोगों के बर्थडे होने के साथ साथ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे भी होता है। सो देखिए, कल तो हम इस बारे में बात नहीं कर पाते, लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना देखो, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पे जो है बात होती रहनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए। एंड कई ऐसे टैबूज हैं जो मेंटल हेल्थ के अराउंड जो है लोगों ने बिल्ड कर दिए। यार अगर कोई थोड़ा सा एंशियस रहता है पूरे टाइम, तो उसको बोल दिया कि यार तुम तो ADHD है तुम्हें। जिन लोगों को सफाई करने की आदत होती है, चीज़ें ऑर्गेनाइज पसंद होती हैं, वो लोग कह देते हैं कि यार मुझे तो शायद OCD है। सो यार देखो, मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी सीरियस चीज़ है। सो अपनी डेली की आदतों को जो है ना इन डिसऑर्डर से रिलेट करना जो है वो बंद करो। एंड आप लोग भी अगर ऐसे लोगों को देखो जो यार अपनी हेल्थ कंडीशन को या अपने नॉर्मल आदतों को किसी भी यू नो मेंटल डिसऑर्डर से जो है वो रिलेट कर रहे हैं, तो कॉल आउट दिस बिहेवियर, क्योंकि ये सही नहीं है। ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है उन लोगों के लिए जिनको सच में यू नो डायग्नोस हुआ है कोई ना कोई डिसऑर्डर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा यू नो जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करने के बाद ही आप डिक्लेयर कीजिए कि यार मुझे जो है ये डिसऑर्डर है या मैं इससे जूझ रहा हूं, एंड फिर उसके लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए जो किया जा सकता है वो कीजिए, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ और कहे। देखिए, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपके हाथों में है, ये आपको समझना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी किसी भी वर्क प्लेस को या चाहे भी अपनी फैमिली को या अपने आसपास के लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो है कसूरवार ठहरा दें, लेकिन सबसे ज़्यादा सच बात तो यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ आपके हाथों में होती है। आप चाहे तो ऐसी वर्क प्लेस को छोड़ सकते हैं, अपनी फैमिली वालों को जो है उनसे बात कर सकते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो यार क्यों अपनी मेंटल हेल्थ के साथ जो है कोई खिलवाड़ करना है। अमेजिंग गाने जो है वो सुनते जाओ, एंड बस एक ही चीज़ कहूँगी, जियो बिंदास। फिलहाल मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है आ रहा है आपके रेडियो से, इस पर ज़रा आँख बंद करके अगर आप ये गाना जो है इमेजिन करेंगे ना, तो आपको किसी की बहुत ही ग्रैंड सी शादी जो है वो आप इमेजिन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। वारू फॉर एवर मिर्जापुर मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए गाना आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो ऑलिव नंबर वन
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pay free cash vouchers.
4: In association with
5: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: सोचो अगर ये गाना जो है वो कतर में बना होता तो कितना ज्यादा अमेजिंग होता ना, कभी वुकेर रोड, कभी वकरा रोड, कभी लुसेल रोड, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देर में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं उतनी जगह उतनी देर में दूसरी जगह जाने का वक्त हो जाता है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है थोड़ा सा बिंदास बनाने का जो है मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश किया। अब देखो यार, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लाइफ में लगता है कि यार हम जो है कहाँ जा रहे हैं, एंड मुझे ये जो है लगता है जब मैं कतर के रोड्स पे चलती हूँ। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन मुझे जो है कतर में आगे सबसे बेस्ट बात भी इसकी रोड्स ही लगी है। मैं सच में जब भी रोड्स पे आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वाह यार क्या व्यू है। एंड आप मेरा कैमरा देखिए, पहले ऐसा होता था कि मेरा जो कैमरा रोल है, मेरी जो गैलरी है, वो सिर्फ मेरी फोटो से भरी होती थी या फिर मेरे खाने की फोटो से भरी होती थी। लेकिन अब इन दोनों चीजों के अलावा जो है वहां पे रोड्स ने भी जगह बना ली है। मैं जब जाती हूँ, भले ही सेम रास्ते से मैं ऑफिस आती हूँ, सेम टाइम पे मैं वापस जाती हूँ, सन जो है राइज से लेकर सनसेट तक सारे टाइप की आपको वीडियो उस रोड की मेरे फ़ोन पे जो है मिल जाएगी। आप गूगल मैप्स पे जाइए, आप वो लोकेशन जाके शेयर कीजिए, आपको जो है वो हो सकता है कि फ़ोटो मेरे ही फ़ोन से खींची हुई दिख जाए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया आई नो, लेकिन मुझे जो है कतर पे रोड पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी फ्लॉलेस, इतनी अमेजिंग, मज़ा ही आ जाता है यार। देखो ड्राइव करने पे सच में मज़ा आता है, लेकिन ड्राइव करने में तब तक मज़ा आता है जब तक आपके चलान नहीं हो रहे। सो देखो ट्रैफिक रूल्स का पालन जो है वो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल भी आपको यू नो सीट बेल्ट नहीं भूलना है, फ़ोन नहीं चलाना है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। और कुछ जो है मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि देखो यार अपनी लेन अचानक से चेंज नहीं करनी है, और अगर रात को आप वापस जो है जब ऑफिस से वापस आएंगे तब जो है हेडलाइट जो है वो बहुत तेज़ नहीं रखनी है, पार्किंग जो है वो और जगहों पर नहीं करनी है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर देखिए ड्राइविंग जो है वो कतर में कितनी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। एक बार आदत लग गई आपको रूल्स फॉलो करने की, फिर आपको बढ़िया मज़ा आएगा। फिलहाल जो है ज़बरदस्त हिट गाने सुन के भी जो है आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ज़रा वॉल्यूम बढ़ा कर गाना इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश की साथ। स्टेडियम जियो बिंदास,
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: डेमो जाके।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: बिंदास।
3: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही?
4: यस बेबो,
3: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
4: यस,
3: कैच क्या है?
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
3: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
4: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
6: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
7: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
0: पहला जादू।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

पपीता नहीं देखे पिता के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो रिश्ते में सबके बाप लगते हैं उनकी बात कर रहे हैं आज। हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, आप मेरे साथ बिंदास मॉर्निंग जो है वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आज है किसी बहुत ही खास इंसान का हैप्पी वाला बर्थडे, एंड वो है बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन। हाँ, मैंने जब ये 10th अक्टूबर को बर्थडे वाली बात जो है वो कही थी, तब मुझे ये वाली बात भी कहनी थी लेकिन मैं भूल गई। सो फिलहाल जो है हम अमेजिंग वाला गाना जो है बिग बी का एंजॉय करते हैं, एंड आपको मैं इस गाने के साथ छोड़ के जाती हूँ। आज सारा दिन आप बिग बी के अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, कहते रहिए जी बिंदास, बाय बाय, टेक केयर।

0: छोटे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में फास्ट इजी और रिलायबल विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है. किसी ने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड किया इस वीकेंड, तो किसी ने बाहर जाकर अच्छा खाना खाया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दो दिन सिर्फ ये सोचने में निकाल दिए होंगे कि आज कुछ नहीं करेंगे. लेकिन अब वीकेंड की छुट्टियों को कहिए बाय बाय, और कतर में आज है नया वर्किंग डे. वैसे सुबह उठने का भी अपना एक अलग ड्रामा होता है. अलार्म बजता है और हम उसे बंद करते हैं, फिर 5 मिनट और सोने की कोशिश करते हैं, और जब आखिरकार उठते हैं तो बॉडी तो उठ जाती है लेकिन जो हमारा सोल है वो अभी भी वीकेंड में घूम रहा होता है. फिर एक कप चाय और कॉफ़ी के साथ हम खुद को समझाते हैं, चलो भाई नई सुबह है, नए काम है और नई शुरुआत है. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हर नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. कभी कभी ना बस तैयार होकर घर से निकलना अपना काम शुरू कर देता है. सो आज अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, एक एक काम कीजिए, बीच में मुस्कुराइए, और याद रखिए काम कितना भी हो, ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है. मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑल 106.3 एफएम पर. अब मुझे बताइए कि आज सुबह आपका अलार्म पहली बार में बजा और आप उठ गए, या फिर आपको मेरी तरह बहुत टाइम लगा उठने में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: So today's new day और आज है 11th of October, right? So today's International Day of the Girl Child और इस दिन बात करते हैं, छोटी सी बात याद दिलाते हैं कि लड़कियां कितनी स्पेशल होती हैं. So वो आपसे कह सकती हैं कि यार मुझे पायलट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है और मुझे पूरी दुनिया घूमनी है. बचपन में सपनों की कोई लिस्ट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, कई बार दुनिया हमें बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं. खासकर स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हम लड़कियों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की तारीफ करना मकसद नहीं है आज का. मकसद है कि यार मतलब उनको जो बनना है, जो यू नो करना चाहती हैं, वो फ्रीडम उन्हें मिल जाए और उसके अलावा कुछ नहीं. और आज तो भाई लड़कियों को अगर आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि कंट्री के हर यू नो कोने में, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल हो या फिर एयरलाइंस हो, हर जगह पर लड़कियाँ आपको सबसे आगे दिखेंगी. और मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज है. सो या लेट्स सेलिब्रेट दिस डे. और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

अच्छा, एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन चाहिए। सोचिए आप किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ एक इंसान आपसे मिलता है और कहता है कि हाय मेरा नाम राहुल है, और आप कहते हो हाय राहुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर दो मिनट बाद आप अपने दोस्त से धीरे से पूछ रहे होते हो यार उस बंदे का नाम क्या था। अब सवाल ये है कि हम लोगों के चेहरे तो हम याद रख जाते हैं, लेकिन उनकी बातें भी याद रह जाएं, लेकिन नाम आते ही हमारा दिमाग ना थोड़ा छुट्टी पे चला जाता है। इसका एक बड़ा रीज़न है हमारा ध्यान। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग एक साथ कई सारी चीज़ें ना प्रोसेस कर रहा होता है, संभाल रहा होता है। हम सोच रहे होते हैं कि क्या बोलना है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, कैसे बात आगे बढ़ानी है। ऐसे में ना कई बार हम नाम सुन तो लेते हैं लेकिन उसे दिमाग में ठीक से ना रजिस्टर नहीं कर पाते, यानी प्रॉब्लम हमारे याददाश्त में नहीं होती। कभी कभी हम उस पल में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे होते। सो अगली बार जब कोई अपना नाम बताए तो एक छोटी सी ट्रिक आजमाइएगा, बातचीत के टाइम पर उसका नाम दोबारा इस्तेमाल कीजिए। जैसे अच्छा योर नेम इज राहुल, आप यहां कब से रहते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि वो नाम आपको कितनी

0: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।
1: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए बिग बी के गाने सारा दिन।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा।

0: सो आजकल ना वॉइस नोट भेजता तो हमारी रोजमर्रा की ऐसे जिंदगी का ना हिस्सा बन गया है। किसी को लंबे मैसेजेस लिखने का मन ही नहीं करता और हम सीधे वॉइस मैसेजेस भेज देते हैं। जैसे आप लोग मुझे मैसेज करते हो और मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार इतना ईजी है, पढ़ना नहीं पड़ता, आप यू नो चलते फिरते अपना कंप्यूटर चलाते चलाते सुन सकते हो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफकोर्स लाइफ मस्त है। लेकिन क्या आपने कभी अपना वॉइस नोट भेजने से पहले सुना है और सोचा है एक मिनट ये मेरी आवाज़ है, ये मैं ऐसे बात करती हूँ? नहीं, कई लोगों को ना अपनी रिकॉर्डिंग अपनी आवाज़ सुनकर ऐसा ही लगता है। और इसके पीछे ना एक बहुत ही अच्छा साइंस है। जब हम खुद बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज़ दो तरीके से सुनाई देती है। एक तो जो एयर है उसके ज़रिए हवा में कानों तक पहुँचती है, और दूसरा जो हमारी बॉडी है उसकी बोन्स में होने वाली जो वाइब्रेशन है वो हमारी आवाज़ सुनने में एक्सपीरियंस करती है। इसी वजह से हमें अपनी आवाज़ खुद को थोड़ी सी अलग सुनाई देती है। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हमें मेनली जो एयर वाली आवाज़ है वो सुनाई देती है। इसीलिए रिकॉर्डिंग में हमारी आवाज़ हमें ज़्यादा यू नो अलग सुनाई देती है, अलग लगती है। सो अगली बार वॉइस नोट भेजकर परेशान मत होइएगा कि आपकी आवाज़ अचानक बदल कैसे गई, बस उसे सुनने का तरीका बदल गया है। और एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए, आज आप 20 सेकेंड का वॉइस नोट रिकॉर्ड कीजिए, उसमें बताइए कि आपका मूड कैसा है और फिर वीकेंड की सबसे अच्छी बात क्या रही, फिर उसे सुनिए और मुझे भेजिए 3311063 पर। वैसे मुझे बताइए कि आप उन लोगों में से हैं जो वॉइस नोट भेजने से पहले उसे 3 बार सुनते हैं या फिर सीधे फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं और भेज देते हैं। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

यू नो, कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा हो लेकिन अंदर से ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो. आप काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, हंस भी रहे हो लेकिन मन में ना कुछ चल रहा है जो किसी को पता नहीं पा रहे हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है. सो आज की मेरी बुक टॉक में इसी फीलिंग के बारे में हम बात करते हैं. किताब है मे बी यू शुड टॉक टू समवन, जिसने यू नो आपको ये फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना सिखाया है. और जैसे अगर मैं बात करूँ तो कोई टिपिकल मोटिवेशनल किताब नहीं है ये. यहाँ आपको हर पेज पर बस पॉजिटिव रहने की एक एडवाइस मिलेगी. इसमें एक थेरेपिस्ट की कहानी है जो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनाती है लेकिन अपनी जिंदगी में एक मुश्किल सिचुएशन आने पर उसे खुद भी थेरेपी की जरूरत पड़ती है. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंसान दूसरों को समझने में मदद करता है उसे भी कभी कभी किसी दूसरे इंसान की मदद चाहिए होती है. और ऑनेस्टली हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है, हम अपने दोस्तों को एडवाइस देने में बहुत अच्छे होते हैं, यार उसे भूल जा, इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह. लेकिन जब वही सिचुएशन ना हमारे ऊपर आती है तो खुद को समझना इतना आसान नहीं होता. और इस किताब की इस खूबसूरत बात को मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें याद दिलाती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिलना ज़रूरी भी नहीं होता. कभी कभी हमें बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो बिना जज किए हमारी बात सुन ले. सो आई हैव अ क्वेश्चन, आप अपनी प्रॉब्लम के साथ क्या करते हो? किसी दोस्त से बात करके हल्का महसूस करते हो या अपनी फीलिंग लिखते हो या फिर सब कुछ अपने अंदर ही रखना पसंद करते हो? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टेट यून जियो बिंदास.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई
3: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में कतर में पहली बार
4: हेलो नमस्कार मम्मी मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: अच्छा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, कभी रोज बात होती थी, हर छोटी बात शेयर होती थी, फिर धीरे धीरे लाइफ बिजी हो गई। किसी दिन आपने मैसेज किया, रिप्लाई देर से आया, अगली बार उसने मैसेज नहीं किया तो आपने भी नहीं किया, और देखते देखते महीने निकल गए। अब दोनों के फोन में एक दूसरे का नंबर है, दोनों कभी कभी एक दूसरे की स्टोरीज भी देखते हैं, लेकिन बात शुरू करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। और सबसे मजेदार बात, दोनों शायद यही सोचते रहते हैं कि अगर उसे बात करनी होगी तो वो खुद मैसेज कर लेगी। और हमारी लाइफ में कितने रिलेशन ऐसी बड़ी लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी चुप्पियों की वजह से दूर हो जाते हैं। मैं आज इसलिए नोटिस कर रही थी कि आज संडे है, कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में हैं, और मैं ये देख रही थी कि वो फ्री होंगे इस टाइम पर और मैं ऑफिस में हूँ। उनका मैसेज आया, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि टाइम नहीं है, पर जब मैं मैसेज करती हूँ तो उनके पास टाइम नहीं होता। कई बार हम एक सिंपल सा मैसेज भी इसीलिए नहीं भेजते क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं उसे लगे कि मैं मुझे ज़रूरत है उसकी, कहीं उसने मुझे भुला तो नहीं दिया, कहीं रिप्लाई नहीं आया तो। लेकिन एक बात सोचिए, अगर वो रिलेशनशिप कभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था तो क्या एक मैसेज भेजने में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी? नहीं ना। ज़रूरी नहीं है कि हम पुराना रिश्ता वापस पहले जैसा कर लें। कुछ लोग आगे बढ़ चुके होते हैं, कुछ रिश्ते का चैप्टर सच में ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन कभी कभी ना एक छोटी सी पहल कम से कम ये सोचने पर बचा सकती है हमें कि काश मैंने एक बार मैसेज कर दिया होता। सो अगर आज आप किसी पुराने दोस्त का ख्याल आए तो उसे मैसेज करना चाहें तो सिंपल सा हाय हाउ आर यू ये सब भेज सकते हैं, और मुझे बताइए कि आपके फोन में ऐसे कौन सा कॉन्टैक्ट है जिसे देखकर आप सोचते हो कि यार इससे तो बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास, नंबर इज सेम 3311063।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप।

0: अच्छा एक सवाल पूछूं, आपने कितनी बार कोई नई चीज शुरू करने का सोचा और फिर ये सोचकर रुक गए कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाई तो? कभी कभी ना नया कोर्स, जिम, कुकिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई छोटा सा बिजनेस आइडिया जो दिमाग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुरू करने की बारी आते ही हम उस 10 नुकसान गिनने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि पहली कोशिश में ही सब कुछ परफेक्ट हो, पहला वीडियो अच्छा हो, पहला प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव हो, पहला दिन प्रोडक्टिव हो, लेकिन रियलिटी ये है कि शुरुआत में हमसे ज़्यादातर लोग थोड़े ऑकवर्ड होते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कतर में मैंने इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी रेगुलर लाइफ दिखाना स्टार्ट की और कुछ व्लॉग्स के बाद, कुछ वीडियोस के बाद उन्हें देखकर मज़ा आने लगा। कहाँ से शुरू करना है और मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। आपने कभी किसी को पहली बार गाड़ी चलाते देखा है? हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, मिरर, ब्रेक, एक्सेलेटर, रोड, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वही काम धीरे धीरे नेचुरल लगने लगता है। लाइफ की कई सारी स्किल्स भी ऐसी होती हैं। कॉन्फिडेंस हमेशा शुरुआत में नहीं आता, कई बार ना एक्शन लेना पड़ता है फिर कॉन्फिडेंस बनता है। सो यू टेल मी कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी फाइनल एबिलिटी का सर्टिफिकेट है, आपको ऐसा लगता है या नहीं? और मुझे बताइए अगर आपको आज बिना किसी डर और बिना किसी जजमेंट के एक नई चीज़ ट्राई करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज सेम 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
2: ये गाना।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बुक जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अगर हमें पास्ट में लौटने का मौका मिले तो क्या हम सच में अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। किताब का नाम है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, जिसे एक जापानीज राइटर ने लिखा है। कहानी टोक्यो के एक छोटे से कैफे की है जहाँ लोगों को पास्ट में जाने का मौका मिलता है, लेकिन इससे कुछ रूल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आराम से रह सकते हो। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल ये है कि वापस आने से पहले आपकी कॉफी ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब टाइम बहुत कम है आपके पास। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक कप कॉफी रखा है और आपको अपने पास्ट में किसी एक पल में लौटने का मौका मिलता है। आप किससे मिलने जा रहे हो, किससे कुछ कहना चाहते हो, या कौन सी बात है जिसे आप एक बार में फिर से यू नो फील करना चाहते हो। लेकिन इस किताब की खूबसूरती सिर्फ टाइम ट्रैवल में नहीं है, ये उन अधूरी बातों को, रिलेशनशिप को, इमोशंस को, जिन्हें हम ना अपने हाथ में अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। कई बार हमें लग रहा होता है कि पास्ट में जाकर कुछ बदल दें तो वही यू नो बेटर होगा, लेकिन शायद हर चीज़ बदलना ही सॉल्यूशन नहीं होता। और कभी कभी हमें बस किसी बात को समझने की ज़रूरत होती है, किसी को माफ़ करने की, किसी फीलिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। एंड ऑनेस्टली अगर पास्ट में लौटना पॉसिबल भी होता तो क्या हम अपने सारे डिसीजंस बदलना चाहते? शायद कुछ गलतियों ने हमें वो इंसान बनाया है जो हम आज हैं, तो क्यों बदलना फिर? और आज का सवाल भी थोड़ा सा फिल्मी है। अगर आपको पास्ट में सिर्फ 10 मिनट के लिए जाने का मौका मिले तो आप किस पल में वापस जाना चाहोगे और क्यों? देखो कई बार ऐसा लगता है काश मैंने ये नहीं किया होता, बट यू नो समटाइम्स वी फील कि जो आज एक्चुअली हम हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली जो पास्ट में हुआ था। सो आई फील एवरीथिंग इज स्पेशल। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Cool song. Radio Olive Bird. Aane wala gana. Cool song of the year.

0: So, कभी नोटिस किया है कि कई बार हमारा दिन शुरू होने से पहले ही हमारा दिमाग थक चुका होता है। सुबह आंखें खुलते ही फोन चेक किया, फिर मैसेजेस, ईमेल्स, न्यूज, सोशल मीडिया और किसी की परफेक्ट लुकिंग लाइफ देखकर अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू। फिर दिमाग में एक साथ 10 बातें, आज ये करना है, कल वो करना है, उस मैसेज का रिप्लाई देना है, वो काम पेंडिंग पड़ा है, और हाँ, पिछले हफ्ते जो बात हुई थी उसका भी जवाब सोचना है। मतलब हम बेड से उठे भी नहीं हैं और दिमाग ने पूरा ऑफिस खोल दिया है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा डिसिप्लिन, और ज़्यादा प्लानिंग, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास टाइम कम है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ है। हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है, हर छोटी बात पर अपनी ओपिनियन देना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा डिजिटल स्पेस बनाना भी हेल्पफुल होता है। सुबह उठकर कुछ मिनट फ़ोन से दूर रहिए, चाय आराम से पीजिए और अपने दिन के सिर्फ 2 या 3 इम्पॉर्टेंट काम, मतलब ऐसे डिसाइड कर लो कि ये करना है। और अगर कोई काम आज नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा दिन खराब हो गया। हम इंसान हैं यार, कोई मशीन नहीं है, हर दिन बिना रुके काम करना है। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगले 20 मिनट्स तक अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन से दूर रहो और सिर्फ एक काम पर ध्यान दो, फिर देखो कितना फ़र्क महसूस होगा। सो यू टेल मी, आपका ध्यान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से भटकता है? फ़ोन, ओवरथिंकिंग, या वो इंसान जो काम के बीच में आकर कहता है कि बस 2 मिनट की बात है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: नाम क्या है तुम्हारा?
2: मेरा नाम विजय।
3: तेरा नाम जॉन?
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
3: कौन हो तुम?
4: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं।
5: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर गुड।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

So, आज की आखिरी बात एक ऐसी फीलिंग पर है जिसे शायद हम में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। आपने पढ़ाई पूरी की, फिर किसी दोस्त की अच्छी जॉब लग गई, किसी ने अपना घर खरीद लिया, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, किसी की शादी हो गई और कोई चला गया कहीं किसी यूरोप वोरोप में घूमने के लिए, और आप अपने कमरे में बैठकर सोच रहे हो कि यार सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है और मैं यहीं के यहीं हूँ। सोशल मीडिया इस फीलिंग को और बढ़ा देता है क्योंकि वहाँ हम लोगों की ज़िंदगी के हाईलाइट्स देखते हैं, किसी का प्रमोशन, किसी का हॉलीडे, किसी की नई कार, किसी के अचीवमेंट्स। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। लेकिन किसी की पूरी लाइफ हमें दिखाई नहीं देती, हमें पता नहीं कि उसके पीछे कितना प्रेशर है, कितनी मेहनत है, कितनी सारी चीज़ें उसने छोड़ी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर किसी की स्ट्रेट पॉइंट जो है वो अलग है, मतलब स्टार्टिंग जो है ना वो अलग है। सो किसी को जल्दी सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 25 में करियर सेटल लगता है, किसी को 35 में अपना डायरेक्शन समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे और कोई पीछे है, दोनों की जर्नीज अलग हैं। सो अगर मैं आपसे जाते जाते कहूँ कि अगली बार किसी को सक्सेसफुल देख करना, अपनी जर्नी पर डाउट मत करना, खुद से पूछिए क्या मैं सच में पीछे हूँ या बस किसी और की टाइमलाइन को अपनी टाइमलाइन बना रही हूँ। सो आपको अपनी जो लाइफ है उसमें क्या चाहिए या आपको डिसाइड करना है, अपनी स्पीड पे डिसाइड करना है। सो आई हैव टू यू नो गो दिस टाइम विद लॉट ऑफ न्यू ब्यूटिफुल ट्रैक्स जो कि बैक टू बैक आप सुनने वाले हैं, जबरदस्त हिट गाने। मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं लाइफ मस्त है सिर्फ रेडियो ऑल 106.3 FM पर। कल सेम टाइम सेम जगह पर मिलेंगे विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
1: यस बेबो,
0: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
1: यस,
0: कैच क्या है?
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
1: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
3: Hi everyone, this is Benny Deol here.
4: Olive Radio 106.3.
3: Jubindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm a number one.
7: Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop back

0: नाम क्या है तुम्हारा?
1: मेरा नाम विजय।
2: तेरा नाम जॉन।
1: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
2: कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह।
3: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ। ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम गाने सुनाने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, ढेर सारे किस्से खबरें कहानियां शेयर करने वाले हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं। तो यहीं पे हम भी अपने बातों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताइए क्या हाल है। और यही बोलते हुए किक स्टार्ट करते हैं ऑलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।
1: नाम क्या है तुम्हारा?
2: मेरा नाम विजय।
3: तेरा नाम जॉन?
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
3: कौन हो तुम?
4: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं।
5: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए बिग बी के गाने सारा दिन।

0: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान। अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में। कतर में पहली बार।
1: Hi guys, this is Abar Shetty Khurana और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव।
2: Is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यहां पे एक इंसान ने जो है एक नई जर्नी स्टार्ट की है, वो इंसान और कोई नहीं है, द मैन द मिथ द लेजेंड द सलमान खान। जी हाँ, सलू भाई ने जो है अपनी एक नई जर्नी शुरू की है डिजिटल वर्ल्ड में। एज कंटेंट क्रिएटर वो उतर रहे हैं, यूट्यूब का उन्होंने अपना चैनल शुरू कर दिया है। चैनल का नाम है बीइंग सलमान खान। इसका जो आईडी है वो है @beingthesalmankhan करके, जिसमें 11 वीडियोस ऑलरेडी वो डाल चुके हैं, 39.2K सब्सक्राइबर्स हैं। जहां पे उन्होंने बोला कि चलिए शुरू से शुरू करते हैं करके, देखिए काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच होने वाला है ये देखने के लिए। हम भी काफी एक्साइटेड है कि सलमान भाई कैसे अपने इस डिजिटल वर्ल्ड के नए एक जर्नी को आगे ले जाने वाले हैं। एनीवे, अगर आपने अभी तक सलमान भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बताइए मुझे, नहीं किया है तो देख लिया, आपकी चॉइस है। और ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Cool song.

आप सभी का एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यहां पे छोटा सा एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा आपको। देखिए हुआ ये था कि बहुत टाइम पहले जब मैं ऐसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं अपर बर्थ में अपना आराम से मजे से लेटा हुआ था। एक गलती मेरे से हो गई थी, मैं अपना ईयरफोन लेके जाना भूल गया, घर में छोड़ गया था मेरे। 3 दिन ट्रेन में बैठना था, मुझे ईयरफोन नहीं था। किस्मत अच्छी थी कि किताब मेरे पास थी, तो मैं किताब पढ़ रहा था बैठ के। अब हुआ ये कि मेरे सामने जो साइड लोअर सीट में जो सर बैठे थे, वो कोई मूवी देख रहे थे। अब देखिए, उन्होंने मूवी में ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, मगर शुरुआत से लेके एंड तक पूरी मूवी की स्टोरी मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि वो लाउडस्पीकर में देख रहे थे। ठीक है, उन्होंने भी ईयरफोन नहीं लगाया था, और मुझे लगता है पूरी ट्रेन ने शायद सुन ली होगी उस मूवी की आवाज़, क्योंकि भाई रात हो सुबह हो, वो बीच बीच में ऐसे डाल डाल के देख रहे थे। सीन बाय सीन जो है वो मूवी हमें याद सी हो गई थी 3 दिन के अंदर अंदर। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों हो, मगर शायद अब अगर ऐसी हरकत करें तो फाइन लग सकता है। उसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे थोड़ी देर पहले मैंने अपनी एक कहानी सुनाई थी जहां पे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और एक हमारे जो को ट्रैवलर थे वो मूवी देख रहे थे। मूवी की कहानी जो है हम सब ने सुन ली थी, तो उसी सिलसिले से रिलेटेड एक चीज है। सो इंडियन रेलवेज ने अभी बोला है कि पैसेंजर्स मे गेट अ फाइन ऑफ 1,000 rupees फॉर प्लेइंग लाउड म्यूजिक ऑन ट्रेन्स। ठीक है, लाउड और प्रोलॉन्ग्ड फोन कॉन्वर्सेशंस, डिस्टर्बिंग रिंगटोन्स जो दूसरों को इनकन्वीनियंस पहुंचा सकते हैं, स्पेशली क्लोज्ड स्पेसेस में जैसे कि एसी कोचेस में, अगर ऐसा है तो दे कैन गेट 1,000 rupees फाइन इन एडिशन टू रिमूवल फ्रॉम द रेलवे एंड फॉर फ्यूचर ऑफ पास और टिकट करके। देखिए, आना चाहिए क्योंकि सही में कुछ लोग जो है ध्यान नहीं देते कि भाई आगे वाले जो हैं उनको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है करके, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: लाइव अपडेट्स।
1: कार्ड्सकॉन 2026 एंड्स। कतर्स फर्स्ट लार्ज स्केल कलेक्टेबल कन्वेंशन रैप्ड अप अ सोल्ड आउट वीकेंड एट द शेरेटन ग्रैंड दोहा, ड्रॉइंग ओवर 3,000 ट्रेडिंग कार्ड्स एंड पॉप कल्चर एंथुजियास्ट। Spanish Food Festival, Lulu Hypermarket at the Pearl Qatar launched the Festival of Spain, featuring the cooking demos, tapas and Estonian imports running until October 14th. Bird Conservation Drive, the Ministry of Environment launched field program across local wetlands to protect ecosystem for World Migratory Bird Day.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यहां पे एक चीज मैं आपको सजेस्ट करने के लिए आया हूं, मतलब प्लीज ये आप कर लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपने जाकिर खान का पापा यार अभी तक नहीं देखा तो देखिए, सही में मजा आएगा। अपने बाबा के साथ का जो एक डायनामिक्स है रिलेशनशिप का, उसके बारे में आप जरूर रीथिंक करोगे। आप सोचोगे कि शायद मैं थोड़ी चीजें डिफरेंट कर सकता हूँ करके, आपको सही नहीं अच्छा लगेगा। दोस्ती के बारे में भी उसमें जो है टच किया गया है, और अपने पापा के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है। इट्स अ नाइस थिंग टू वॉच, और मजा आपको बहुत आएगा। आप हंसोगे, आप हल्का सा आंसू जो है बहाओगे, आप सोचोगे। तो बेसिकली जाकिर खान का स्टैंड अप जो है वो आपको सिर्फ हंसाता नहीं है, इट टेक्स यू थ्रू ए वर्लपूल ऑफ इमोशंस। तो जरूर आप उसे चेकआउट कीजिए, और यही बोलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम।

0: आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे चाइना के एक इनोवेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए चाइना जो है बहुत सारी चीजों में बहुत बढ़िया तरीके से इनोवेट कर रहा है और इन्होंने एक ऐसी जगह पे इनोवेशन दिखाया है जो शायद कुछ लोगों को कॉल आउट कर देगा। सो बेसिकली चाइना जो है ऐसे बाथरूम बना रहा है जिसके बाहर टाइमर दिखाता है कि एक इंसान इस बाथरूम को कितने देर से यूज कर रहा है। भाई ये तो सही में लोगों से जज करवाएगा यार। बहुत सारे लोगों को कॉल आउट फील कर गया होगा। बट या अब खुशी की बात यह है कि हम चाइना में नहीं है तो ओके। और ये बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: नाम क्या है तुम्हारा?
2: मेरा नाम विजय।
3: तेरा नाम जॉन।
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
3: कौन हो तुम?
4: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह।
5: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए बिग बी के गाने सारा दिन।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे जो है एक वीडियो मैंने देखा था एक रोड ट्रिप के बारे में। वो एक्चुअली मुझे देखे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो है मेरे होम टाउन के बारे में मेंशन किया था। तो अगर आपको कहीं रोड ट्रिप करना है इंडिया में तो सबसे बढ़िया जगह है, यू शुड गो डाउन टू ट्रिवेंड्रम। वहां पे बीच रोड है यानी कि कोस्टल रोड है। आप कोस्टल रोड से रोड ट्रिप लेते हुए जाइए करके एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई थी। और इससे रिलेटेड मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी कभी ना हमें अपने लाइफ में अगर मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, कुछ दिन मिल रहे हैं तो ट्रैवल कीजिए। सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं तो अपने किसी बड़ी के साथ, ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती है, उसके साथ ट्रैवल कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप दूसरे कल्चर देखोगे तो हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे, मतलब और भी बेहतर हो जाएंगे। तीसरी बात ये है, एक ब्रेक मिलेगा हमें इस भागदौड़ वाली जिंदगी से। जो है हम थोड़ा सा थम जाएंगे, थोड़ा धीरे चलने लगेंगे, आसपास की चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक सेल्फ एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। हम चीजों को बहुत अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं, थोड़े और जो है हम्बल हो जाते हैं। जब हम देखते हैं ना यार नेचर इतनी बढ़िया चीज है, उसके सामने हम इंसान क्या है, तो काफी हम्बलिंग एक प्रोसेस भी है। तो अगर कभी वक्त मिलता है तो या तो मोटरसाइकिल उठा के जाइए या कार में बैठ के जाइए, मगर जाइए जरूर, ट्रैवल जरूर कीजिए। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज आपके ब्रेन के बारे में बताना चाहूंगा, यानी कि हम सबके ब्रेन के बारे में। सो बेसिकली एक स्टडी जो है की गई थी जहां पे एक फोटो लोगों को दिखाई गई और लोगों को बोला कि आप इस फोटो को देखिए, कुछ देर बाद जो है आपको इस फोटो को रिक्रिएट करना है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं आपको बताने करके। और धीरे धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोग इस चीज को रिक्रिएट करने लगे तो उसमें नए नए एलिमेंट्स ऐड करने लगे, क्योंकि उनके ब्रेन ने जो है वो डिटेल्स को, ब्लैंक डिटेल्स को खुद से फिल करना शुरू किया। और ये होता है, एक्चुअली होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बचपन में मैंने वो किया था, ये किया था, शायद आपने वो किया नहीं होगा, आपके ब्रेन ने उस मेमोरी को थोड़ा रीराइट किया होगा। और ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ब्रेन ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसके बारे में अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज आपके ब्रेन के बारे में बताना चाहूंगा, यानी कि हम सबके ब्रेन के बारे में। सो बेसिकली एक स्टडी जो है की गई थी, जहां पे एक फोटो लोगों को दिखाई गई और लोगों को बोला कि आप इस फोटो को देखिए, कुछ देर बाद जो है आपको इस फोटो को रिक्रिएट करना है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं आपको बताने करके। और धीरे धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोग इस चीज़ को रिक्रिएट करने लगे तो उसमें नए नए एलिमेंट्स ऐड करने लगे, क्योंकि उनके ब्रेन ने जो है वो डिटेल्स को, ब्लैंक डिटेल्स को खुद से फिल करना शुरू किया। और ये होता है, एक्चुअली होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बचपन में मैंने वो किया था, ये किया था, शायद आपने वो किया नहीं होगा, आपके ब्रेन ने उस मेमोरी को थोड़ा रीराइट किया होगा। और ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ब्रेन ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके बारे में अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव भाई। मुझे पता चला कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम में हमें विजिट करते हो, हमारे पोस्ट के साथ जो है इंटरेक्ट करते हो, मगर फॉलो नहीं कर रहे। तो जरूर फॉलो कीजिए, पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, क्योंकि काफी बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के मौके हैं। और आप हमें सुनते हुए भाई एक स्टोरी बना के डालिए इंस्टाग्राम में, टैग कीजिए हमें, उस स्टोरी को रीशेयर भी करेंगे। तो यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: क्या नाम क्या है तुम्हारा?
2: मेरा नाम विजय।
3: मेरा नाम जॉन।
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
3: कौन हो तुम?
4: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह।
5: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए बिग बी के गाने

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है, 3 घंटे खत्म हो गए, वक्त कैसे निकला पता नहीं चला, मगर कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे हम। मगर जाते जाते जाते आपको यही याद दिलाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ लेकिन आप लोगों के लिए बोला जिनकी सैटरडे को भी छुट्टी थी। 5:07:25 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं।
1: टाइम चेक, टाइम चेक, ब्रॉट टू यू बाय दानातल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुकवाकिफ अल्कोहल।
0: और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, किसी ने परेशान तो नहीं किया? अरे नाम नंबर सब दे दो, देख लेंगे यार, प्यार से बोल दूंगी कि प्लीज तंग मत करो यार, है ना। पंजाबी उसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे मेरे को लड़ाई करने के लिए ले जाओगे यार आप। 4 घंटे अपने ये 9 बजे तक रहूंगी।

100 किलो वाला प्यार जो है वो बरसा दीजिए। एंड आज अमिताभ सर का हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो हमने एक वीडियो में प्यार बरसाया है अपनी अपनी भाषाओं में। जाके उस वीडियो को चेक करिए और अपने दिन के बारे में बताइए। आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजिए 3311063 पर। जियो बिंदास और इस गाने के साथ, अरे बह जाओ कहीं हवाओं में, खो जाओ। ड्राइव कर रहे हो तो खोना मत, ठीक है? ज्यादा सीरियसली नहीं लेनी मेरी बातें, हर बात थोड़ी लेनी होती है यार, दिमाग में लगाती नहीं हूँ। मेरा फेवरेट काम नहीं है दिमाग लगाना, जब लोग दिमाग लगाते हैं ना तो मुझे लगता है अरे सच्ची।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
2: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
3: Yes.
2: Catch kya hai?
3: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
2: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
5: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

भाई साहब ओवर थिंकिंग करवा दी इस गाने ने. म्यूजिक बहुत खराब चीज है यार, अच्छी भी है. हिट करती है अलग लेवल पे. कभी तो कभी कभी ये जो है ना म्यूजिक बड़ा टॉन्टी हो जाता है यार, क्या कहते हो, ताने मारता है. माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं. और आज बिग बी का हैप्पी वाला बर्थडे है तो उनका

0: जग सारा, ये वाली फीलिंग जो है ना मुझे डांडिया वाले दिन आई थी। तो फ्राइडे नाइट को ए हालो धूम था और हमारे जितने भी लकी लिसनर्स थे वो वहां पे पहुंचे और जिन्होंने टिकट्स खरीदी थी खुद से वो भी पहुंचे और हमने बहुत सारा फन किया यार, गरबा खेला मस्त। ये गरबा वाले कपड़े पहने, लहंगे वहंगे बहुत ही, सब लोग इतने प्यारे लग रहे थे। तो जितने भी लिसनर्स हमारे अभी सुन रहे हैं, आपका डांडिया का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, कितना मजा आया आपको, आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं 3311063 पर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
1: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: राहत साहब ने पूरी जान लगा दी है यार इस गाने में। हाँ जी आपके साथ मैंने पढ़ रही थी कहीं पे लिखा था, कहते कि कुछ दोस्त आपके वैसे होते हैं जिनका फोन आप कभी स्पीकर में नहीं डाल सकते, फिर मैंने रियलाइज किया वो फ्रेंड तो मैं ही जिसका फोन मेरे फ्रेंड्स कभी भी स्पीकर में नहीं डालते, क्योंकि मुझे उनको पता है कि मेरा रेडियो कभी भी किसी भी तरीके से बज पड़ेगा और कोई भी स्टेशन जो है वो पकड़ लेगा, इसीलिए वो डरते हैं, मेरा फोन जो है वो स्पीकर पे नहीं डालते हैं। सो आपके जहन में अभी कोई ना कोई चेहरा जो है वो जरूर आ गया होगा, आपके दोस्त का, रिश्तेदार का, जिसका फोन, अरे भाई उसका गलती से भी वॉइस नोट जो है वो सबके सामने नहीं आप सुनते, उसका फोन आप स्पीकर पे नहीं सुनते। ऐसे लोग फायदे में रहते हैं, बहुत सारे लोगों की ना आजकल आदत होती है कि कान पे फोन नहीं लगाएंगे, वो स्पीकर पे रख के बात करने लग जाएंगे। मेरी आदत है स्पीकर पे रख के बात करने की, बट जब मैं घर पे अकेली होती हूँ तब मैं स्पीकर पे रख के जो आ, क्योंकि एयरपोर्ट्स बहुत देर तक नहीं लगाए जाते हैं और मैं कान पे लगा, इतना प्यार मोहब्बत मुझे है नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं अपना कान दुखवा लूं, ठीक है। सो मैं स्पीकर पे रखती हूँ तो तब बात करती हूँ, लेकिन जिन लोगों की आदत, मेरा एक दोस्त है जिसको मैं जानती, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, अगर तुम सुन रहे हो तो तुमको पता ही है, ठीक है, तो वो मतलब सबका फोन जो है वो स्पीकर पे सुन लेगा लेकिन मेरा नहीं सुनेगा। तो ऐसे लोग फायदे में भी रहते हैं। आई नो बेबी, थोड़ी देर में आ रही हूँ बस यार।
1: नाम क्या है तुम्हारा?
2: मेरा नाम विजय।
3: तेरा नाम जॉन।
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
3: कौन है तुम?
4: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।
5: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए बिग बी के गाने सारा दिन।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Tough kaam aur bhi aasan. Carmel Group laya hai Shantui ke wheel loaders, excavators aur bulldozers. Mazbooti aisi jo har challenge jeet le. Visit Carmel Group now.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

प्यार से बुलाओगे तो आऊंगी यार। लेकिन कोई है जिसको आप इनवाइट नहीं करते हो लेकिन वो आ जाता है, ये आपकी अच्छू अच्छू जो है ना, जब कभी भी लग जाती है समझ ही नहीं लगता कि यार जैसे ही सीजन चेंज होता है वैसे ही ये सारा सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली मेरे को बहुत जल्दी छीके जो है वो लग जाती है, बट क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो मम्मियाँ बोलती है ना कि बेटा बदलता सीजन जो है वो बीमार करके जाता, यानी कि आता सीजन और जाता सीजन, ठीक है। तो अभी पहले गर्मी आने वाली होती है तब हम बीमार होते हैं, जब सर्दी आने वाली होती है तब हम बीमार होते हैं। सो MOPH ने लॉन्च किया है एक कैंपेन जो कि आपके सीजनल फ्लू के लिए है, यानी कि उसका वैक्सीनेशन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो ये जो है आप जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या फिर 50 से ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये वैक्सीनेशन जो है वो फ्री में मिल जाएगा। टीका लगेगा, ठीक है, ज़्यादा चींची मत करना, लगवा लेना, बढ़िया है, पर उसके बाद अगर बीमार पड़ गए डॉक्टर 2-3 और लगाएगा। सो आप जो है हर साल ये लगवाना पड़ता है ताकि आप जो है ये फालतू के पंगों से बचे रहो। कितने सिक लीव लेते रहोगे दोस्त, बीमार हो गए तो मज़ा भी नहीं आता है यार घर पे छुट्टी लेने का, है ना। सो या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 1600 पे कॉल कर सकते हैं, है ना। सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में, बाकी मुझे पता है।

0: आई हाय। और ये गाना आज बर्थडे बॉय के लिए मैं जो है वो डेडिकेट कर रही हूँ, लेकिन बर्थडे बॉय कौन है?
1: हेलो सिमरन जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज मेरे बेटे इब्राहिम का बर्थडे है, सेवंथ बर्थडे। इब्राहिम सेवंथ ईयर का हो गया है और हम लोग गाड़ी में इस टाइम आपका शो सुन रहे हैं, जबरदस्त शो सुन रहे हैं आपका। नंबर वन आरजे आरजे सिमरन कौर का। और इब्राहिम से हाय।
2: हाय,
1: थैंक यू सो मच। रेडियो ऑलिव जियो बिंदा।
0: थैंक यू सो मच इब्राहिम, बधाइयां, मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे। हैप्पी बर्थडे जी, खुश रहो यार, बस और क्या चाहिए लाइफ में। थोड़ी सी बारिश हो जाए अपने कतर में। अभी ना मैं ऑफिस में शर्त लगा रही थी कि भाई मेरे को बताओ कि लग रहा है कि बारिश होगी, और ये बोल रहे हैं कि इस बार तो बारिश पक्के से होने वाली, क्योंकि अब मुझे भरोसा बिल्कुल रहा नहीं है। कल या और आज और कल में बोल रहे हैं, आज तो मुझे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। बाई द वे मैं नीचे गई नहीं है, कहीं बादल गरज के पूरा कतर तो नहीं भीग गया, मुझे बता देना ठीक है, कहीं मैं मिस ना कर दूं यार। 34 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 34 डिग्री सेल्सियस है। लोएस्ट टेम्परेचर आज का 29 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी 58% एंड विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास। और बिग बी का ये गाना आपके लिए पेशे खिदमत है।
3: क्या नाम क्या है तुम्हारा?
4: मेरा नाम विजय।
3: मेरा नाम जॉन।
4: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
3: कौन हो तुम?
5: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह।
6: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए बिग बी के गाने सारा दिन।
7: तुमने वो क्या देखा

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
3: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।
4: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
5: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
8: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: कितना प्यारा गाया यार। यार मैंने ना एक न्यूज देखी, वो वायरल हो रही है और मुझे ना यहाँ पे तरस भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है और फिर ये भी हो रहा है कि यार जितनी जल्दी आपको समझ लग जाए कि यार ये चीजें जो है ना, मतलब आपकी अपनी जिंदगी जो है वो सिर्फ आप ही के लिए मैटर करती है, किसी और के लिए नहीं करती है। सो वॉलमार्ट में एक बंदी जो थी वो काम करती थी, 44 साल उस बंदी ने काम किया और उसकी फेयरवेल पे, उसकी रिटायरमेंट पे उसको फूलों का एक बुके दिया गया और शाउट आउट दिया गया। मतलब सिर्फ इतना, वो बंदी की फोटो ऐसे वायरल हो रही है, सैड फेस के साथ खड़ी है, बुके लेके खड़ी है। भाई साहब मतलब 44 साल उसने लगा दिए, काम किया और उसको ये मिला, या मैं बहुत बुरा लग रहा है यार वो बेचारी बंदी के लिए। सो लाइफ में एक चीज याद रखना कि एक्सपेक्ट जो है ना, आप कहीं से भी किसी से भी मत करो। आपको जो आपकी चीज में, यू नो, लाइफ में चीज चाहिए ना, वो आप अपने लिए करो। और ये मत करो कि मैंने लाइफ में इतना कर दिया तो ये तो मैं डिजर्व करती हूँ। डिजर्व करती हूँ तो आप खुद ले लीजिए वो चीज, किसी और से मत लीजिए। किसी और से अगर आपको मिल गई तो वो तो लॉटरी है यार आपकी, बहुत बढ़िया बात है फिर तो, है ना। बट यार यहाँ मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है यार, बंदी को 44 साल में, अपने कोल ही रख लो तुसी अपने फुल्लां दा बुके। ठीक है, सुनते रहो रेडियो ऑलिव, नूं ते कहंदे रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
1: यस बेबो,
0: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
1: यस yes.
0: कैच क्या है?
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
1: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
2: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
3: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
4: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
5: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

योगिता देखिए हलचल सत श्रीकाल सिमरन कौर है आपके साथ। देखो यार, मूवीज देखने का सबको शौक होता है और आप ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि यार भाई साहब, अदर मम्मी का ट्रेलर मैंने कुछ दिन पहले देखा था, अमेरिकन सुपरनेचुरल फिल्म है ये, मतलब ऐसे लगा कि भाई मजा आने वाला। सो 9 तारीख को क्या हुआ कि डांडिया के बाद की बात है, हमने एक बर्थडे सेलिब्रेट करना था एक दोस्त का, उसको सेलिब्रेट करने के बाद हमको लगा नहीं भाई मूवी देखते हैं यार, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को खींच के ले गई मूवी देखने के लिए और हमने लेट नाइट जो लास्ट शो था ना वो वाला शो देखा। लेकिन क्या था कि डांडिया के बाद और पार्टी के बाद मेरी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई थी, लेकिन मैं जाते ही, डेढ़ घंटे की मूवी थी, पहले घंटे की मूवी में मैं सोई रही हूँ और आधे घंटे की मूवी में क्या हुआ है वो मैंने देखा और मुझे कुछ समझ नहीं लगा और मेरे दोस्त मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि तू खुद तो सो गई, हमको कैसी मूवी में फंसा के लेके आए। लेकिन मेरे को लगा यार ठीक है, बढ़िया मूवी होगी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप ट्रेलर में कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हो, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। IMDb पे इसको 5.5 की रेटिंग मिली और रॉटन टमेटोज ने इसको 18% का जो है वो दिया है। सो अभी मुझे नहीं पता है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। अगर आपको ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं, नहीं तो आ ही जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पे, तब देख लेना यार। और एक गाना जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जैसे कि मैं रेडियो वाली बंदी हूँ, आवाज़ वाली बंदी हूँ, तो ये गाना मेरे दिल के करीब है, तो कि थोड़ी देर में प्ले होगा, पता लगा कौन सा है? चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, बस थोड़ी देर में।

0: थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए। आपका जो प्यार है वो मुझे 9 बजे तक चाहिए यार, अकेले नहीं मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। ज्यादा जो है वो कभी कभी बोलना आपको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप शॉर्ट फॉर्म में जो है, स्लैंग में जो है वो बात करते हो। सो जेंजी डिकोडेड में एक वर्ड है BFFR। सो BFFR यूज किया जाता है, बी फॉर रियल। जी हाँ, जब आप किसी को रियल होने के लिए कह रहे हो, यानी कि मतलब आपसे ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो इतना, मतलब Like just be real, no? BFFR. So yeah, सुनते रहो Radio Olive को और कहते रहो Jio Bindaas.
1: Radio Olive पर. Fresh. ये गाना fresh है. Fresh song of the hour. ये गाना

0: भाई साहब क्या पावरफुल गन है यार। 7:06 स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है सिमरन कौर आपके साथ और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं खुशी कभी कभी और आज अमिताभ सर का हैप्पी वाला बर्थडे भी है तो इन्हीं की फिल्म है। सो क्या हो रहा था कि जब शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का वो रिकंसाइल होते हैं तो उनका वो सीन जो है वो चल रहा होता है तो उनकी एक्टिंग से उस सीन से ऋतिक रोशन इतने ज़्यादा मतलब वो इमोशनल हो गए थे और उनको देख के एकदम सरप्राइज भी हो गए थे तो मतलब इम्प्रेस हो गए थे इन शॉर्ट। ठीक है, इसके बाद वो जो अपना शूट था वो एक्टिंग वाला वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए तो मतलब उनको एक पूरा दिन लेना पड़ा। अगले दिन उन्होंने शूट किया क्योंकि वो मतलब देख रहे थे कि भाई क्या एक्टिंग कर रहे हैं दोनों वो, है ना। सो अमिताभ बच्चन ने उनको काम डाउन किया और उन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं सब कुछ जो है वो हो जाएगा। सो या और उसके साथ जिसमें पू की एंट्री होती है तो पू जब रेडी हो रही होती है उसके गाना बज रहा होता है इट्स रेनिंग मैन। सो वो गाने की राइट्स जो थे उसकी परमिशन नहीं ली थी। अब इस फिल्म के डायरेक्टर को यूके की कोर्ट में सू कर दिया गया था तो उनको पैसे देने पड़े थे इस गाने के लिए क्योंकि परमिशन जो है वो म्यूजिक राइट्स जो है आपको पता है कि हर जगह पे लगते हैं। एंड एक और चीज मैंने नहीं नोटिस की थी, मेरे को आज पता लगा कि शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान वो यंग राहुल का रोल किया है उन्होंने इसमें। सो या और भी बहुत सारी बातें जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। वे भी सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहो जी गोविंदास।
1: मेरा नाम विजय,
2: मेरा नाम जॉन।
1: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर।
2: कौन हो तुम?
3: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह।
4: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है। बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए बिग बी के गाने सारा दिन।

0: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
1: यस बेबो,
0: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
1: यस yes.
0: कैच क्या है?
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
1: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
4: जियो बिंदास.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ.
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

कमाल यार, कभी खुशी कभी गम फिल्म, ये उस टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म थी उस टाइम की, है ना। और ये फिल्म में जो है वो यू नो 2001 की बात है। काजोल जो है उनकी जिंदगी में काफ़ी रफ पैच जो है पर्सनल लेवल पे चल रहा था। एक्चुअली उनके मिसकैरेज हुए थे उस टाइम पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही थी। फिल्म सुपर हिट रही, उन्होंने मेजर अवार्ड्स जो थे वो सारे जीते, बट स्टिल उनकी शक्ल देख के, उनकी एक्टिंग देख के किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। और ये एक पहली फिल्म है जिसके ऊपर, जिसके मेकिंग पे एक बुक लिखी गई है। एग्जैक्टली बुक लिखी गई है कि ये फिल्म किस तरह से बनाई गई है। अब इसमें, इस फिल्म में अभिषेक बच्चन का एक कैमियो रोल जो था वो शूट किया, बट जब फिल्म की एडिटिंग हुई, फाइनल कट हुआ, तो उसमें से अभिषेक बच्चन का रोल जो था वो निकाल दिया गया, है ना। अब आमिर खान को इस फिल्म की स्क्रीनिंग पे बुलाया गया था, कभी खुशी कभी गम की स्क्रीनिंग पे। और जब आमिर खान ने पूरी फिल्म देखी, उनको इतनी गंदी लगी फिल्म, और उनको बहुत ज़्यादा वो लाइक क्या फिल्म बना दी है। और उसने फिल्म खत्म होने के बाद पूरे क्रू को और करण जौहर और इसको शाहरुख खान को अवॉइड करके वो निकल गई। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी, और बाद में वो हंसने भी लगे थे और अपोलोजाइज भी किया था कि ये मैंने गलत किया था। सो या, हर फिल्म के पीछे एक कहानी होती है, तो ये कहानी थी कभी खुशी कभी गम फिल्म की।

0: जाती हूँ, जागती नहीं हूँ मैं किसी के लिए, मैं मेरे लिए जागती हूँ।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

बिना मेट्रो से आप ये गाना सुन रहे सी।

लगती है कि उनका सारा ध्यान उनके फोन में ही रहता है। भाई कोई अगर आपसे बात कर रहा है, कोई आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप अपना फोन जो है वो साइड में रख दिया करो। मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत तगड़ी रिस्पेक्ट होती है कि जैसे आप उनके पास जाके बैठते हो और कोई बात स्टार्ट करते हो, वो अपना फोन जो है वो साइड में रख के उल्टा जो है वो कर देते हैं, ताकि अगर उनको कोई नोटिफिकेशन आए भी तो भी उनको ना पता लगे, फोन आए तो भी उनको ना पता लगे और वो आपकी बात जो है वो सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरह के प्राणी ये भी होते हैं लोग, जो कि आपकी आंखों में आंखें डाल के बात सुनते हैं, लेकिन उनको आप अगर उनसे पूछ लो कि आपने क्या बोला, उनको कुछ नहीं पता। खैर ये भी है, बट एक चीज़ है कि जब भी कोई आपसे बात करे या कुछ भी शेयर करे, तो अपना फ़ोन साइड में रख के पूरा ध्यान जो उनकी तरफ दे लिया करो यार। क्योंकि आजकल ना, आजकल के टाइम पे कोई किसी से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता है, तो कोई अगर आपके साथ बैठ के आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो उसकी भी सुन लीजिए यार। बाद बाद में पूछते रहो यार तूने क्या बोला था। अगर मान लो मैथ्स के टीचर की तरह सामने वाले ने सवाल पूछ ले कि यार मैंने क्या कहा था, तो आप क्या जवाब दोगे? तो पूरा ध्यान जो है वो सामने वाले की बात पे दो यार। 7:38 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, सिमरन कौर आपके साथ है। वापस लड़ गए आपा, खेल दे यार नेम गेम और लेते हैं आप लोगों के नाम, क्योंकि जरूरी है यार आप मुझे सुनते हो पूरे 4 घंटे। सो नाम टाइप करके रख लो, जैसे आपको बोलूं आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करेंगे, फोन क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और बात सुनेंगे।

ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਦਾਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी रेडियो पे बोल दूं तो अभी कभी मैं आपका नाम बोल सकती हूं बट आपको एक काम करना पड़ेगा मैजिकली मुझे नहीं पता लगेगा कि आपका नाम क्या तो बस आप मुझे लिख के भेजिए अपना नाम 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है एक बार वापस से 3311063 इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप मुझे अपना नाम लिख के भेज दीजिए चलिए आप लोगों के नाम जो है वो मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूं नीलोफर जी मोना जी रेवा जी जुल्फी जी शशिकांत जी अब्रार जी नूर उल्ला जी थैंक यू सो मच खैर जी थैंक यू सो मच वर्षा जी थैंक यू सो मच गुलाम जी थैंक यू सो मच स्वप्निल जी थैंक यू सो मच महेंद्र जी थैंक यू सो मच आसमा जी बहुत बहुत शुक्रिया बलाल जी थैंक यू सो मच इमाद जी थैंक यू सो मच सबेसाची जी थैंक यू सो मच अकरम जी रिजवान जी सोहेल जी फिरोज जी अशफाक जी अरे अशफाक मियां दानिश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए इमरान जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए क्विकली दोस्त सिर्फ और फिरोज जी थैंक यू सो मच अपना नाम लिख के भेजिए 3311063 पर ओके मीनू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए रिहा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए फारूकी जी बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत जी थैंक यू सो मच नारायण जी थैंक यू सो मच वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच रमन जी थैंक यू सो मच हुसना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए जमान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए हमद अब्दुल्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए अगला गाना दोस्त शुरू होने वाला फिर मत कहना मेरा नाम जो है वो आप लोगों ने नहीं लिया फिल्म के नाम मत लिखो दोस्त अपने नाम जो है वो लिखो महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए मनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात है सारे के सारे नाम जो है वो मैंने दिख रहे थे वो मैंने ले लिए लेकिन और भी है नाम और जिन्होंने यहाँ नहीं लिख के भेजा मैं कुछ नहीं कर सकती कल लिख देना ठीक है सो अभी आप थैंक यू लिखे भेजिए और अपना फेवरेट वाला इमोजी भेज दीजिए अगले घंटे खेलेंगे एक चुटकी सॉन्ग सो तैयार हो जाइए उसके लिए

listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: लाइव अपडेट्स।
1: कार्ड्सकॉन 2026 एंड्स। कतर्स फर्स्ट लार्ज स्केल कलेक्टेबल कन्वेंशन रैप्ड अप अ सोल्ड आउट वीकेंड एट द शेरेटन ग्रैंड दोहा, ड्रॉइंग ओवर 3,000 ट्रेडिंग कार्ड्स एंड पॉप कल्चर एंथुजियास्ट। Spanish Food Festival, Lulu Hypermarket at the Pearl Qatar launched the Festival of Spain, featuring the cooking demos, tapas and Estonian imports running until October 14th. Bird Conservation Drive, the Ministry of Environment launched field program across local wetlands to protect ecosystem for World Migratory Bird Day.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
1: This is Amira Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

लाइन है यार, मैं और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं। कुछ लोगों को बोलना पड़ता है यार कि बताना यार और कितनी मोहब्बत करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं। तो ऐसे लोगों को 100 किलो बोल दिया करो, ठीक है? क्योंकि सिमरन कौर का लव यू 100 किलो जो है ना, वो अनलिमिटेड एंड डीप लाइक द ओशन है। सो उसमें तो फिर कोई मतलब कोई दो राय नहीं होती ना मोहब्बत की।

ये गाना कौन सा है बताइए अब, अगर आपको पता लगे ये गाना कौन सा है आप बोल के बताइए, गा के बताइए, वॉइस नोट के थ्रू आपने भेजना है, एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी कैरी करके यार। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और जवाब बताइए, गाना बताइए कौन सा है, और भेज दीजिए 3311063। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, एक बार वापिस से सुना रही हूँ।

0: अब आप मुझे बताइए ये गाना कौन सा है। 3311063 पर इंतजार कर रही हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: गाना यार. अरिजीत सिंह ने जान फूंक दी यार.
1: बहुत बढ़िया.
0: और एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको सुनाया था

0: आपका जवाब आया, चलिए सुनते हैं आप लोगों का क्या कहना है। हाँ जी,
1: हाय सिमरन, गुड इवनिंग,
0: वेरी ग्रेट।
1: जो गाना है वो देवदास फिल्म का है।
0: हाँ, थैंक यू।
2: ये देवदास पिक्चर का गाना है।
0: ओके,
2: और ये गाने का नाम है हम पे ये किसने हरा रंग डाला।
0: मुझे लग रहा आप भी हरा रंग डल गया, आप इतने सैड क्यों हो यार। थोड़ी एनर्जी दिखाया करो यार, सिमरन गौर का शो सुन रहे हो, कम ऑन।
3: हे सिमरन, द सॉन्ग यू प्लेड इज हम पे ये हरा रंग किसने डाला,
0: ओके,
3: फ्रॉम द मूवी देवदास। ओके, थैंक यू,
0: थैंक यू। पता नहीं आज सारे परेशान आत्मा जैसे क्यों लग रहे हो यार।
4: हाय सिमरन,
0: हाय,
4: दिस इज मुसर्रत
0: जी, बोलिए।
4: और सॉन्ग है हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मारे डाला, अल्लाह मारे डाला, अल्लाह मारे डाला, अल्लाह मारे डाला।
0: क्या बात है यार,
4: देवदास मूवी का है और अभी लास्ट वीक ही मैंने ये मूवी देखी है दोबारा से।
0: वाओ,
4: पहले तो मैंने लुधियाना में देखी थी
0: जी,
4: थिएटर में, और अभी मैंने एक दिन टीवी पे देखी लास्ट वीक।
0: क्या बात है यार, बधाइयां बिछाइयां थे, बहुत सारे पटाखे। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती हैं जो कि आपको बार बार देखने में मजा आता है, जैसे आप सबको पता है कि भाई लैला मजनू फिल्म है, वो महीने में एक बार तो मैं देख ही लेती हूँ यार।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
2: Yes.
1: Catch kya hai?
2: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
1: I still can't believe it. No catch.
2: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

के बादलों के पीछे है, मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल, और दो आंखें हैरान हैरान सी।

0: बस खामोशी से गाने सुनते रहिए और कल शाम को 5 बजे जबरदस्त इवनिंग्स में फिर से आपसे मिलती हूँ. टिल देन खांदे में दे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे डेविल स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो.
1: नाम क्या है तुम्हारा?
2: मेरा नाम विजय.
3: दीनानाथ जॉन.
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर.
3: कौन हो तुम?
4: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं.
5: 70s का एंग्री यंग मैन हो या आज के जनरेशन का सुपर कूल डॉन, बच्चन साहब का स्वैग हमेशा से अनमैच रहा है. बॉलीवुड के बिग बी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे. आज सुनिए बिग बी के गाने सारा दिन.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली। फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह नहीं निकलेगी भाई की सवारी। हाँ थोड़ा टाइम रुक जा खड़ी कर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास। चांदनी

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।